ओए रंता जोगी, ओए रंता जोगी, होए होए होए होए होए, ओए रंता जोगी, ओए रंता जोगी, होए होए होए होए।